0: बेस्ट प्रोडक्ट कोकोनट चोकोनट भिटा मिल्क बटर प्राइज क्रीम मिल्की बटर तथा डाइजेस्टिव होल व्हीट बिस्किट
1: हेरा हेरा हेरा यो हो हाम्रो चोइस कोको डाइजेस्टिव र कुकी छ है नाइस
0: अडगुरी।

0: भमरपुरा गाउँ जनकपुरबाट धेरै टाढा छैन। इन्डाटोल भनिने दलित बस्तीमा जन्मी हुर्केका थिए राहुल राज मण्डल उर्फ मानिया।
1: We are with Hene Katha and I'm here about Katha Hene. Yo.
2: Happy.
1: Happy. Happy.
3: Happy. Happy. Happy. Happy. Happy. Happy. Happy. Happy. Happy. Happy. Happy.
1: Happy. Happy. Happy. Happy.
3: Happy. Happy.
4: Happy. लड़की के बालक हुए तो अपने घर बुलाते
3: बुआले के सुन्नु भएको त्यो
1: प्रवचन एउटा सन्त हुनुहुन्छ होइन उहाँको फ्लोर मेरो बुवा होइन वर्षहरू सुन्ने ज्ञानकै कुरा छ बिहान उठेर मेरो काम दिल्लीको काम यही छ फर्स्टमा गाईको काम गर्ने अनि त्यसपछि आफ्नो काम गर्ने आज त हाम्रो सुट छ हजुर एकछिन पछि सुट छ हाम्रो केटाहरू आउँदैछ अनि त्यसपछि फ्री सुट नै हो ग्ल्याम सिनहरू खिच्नु छ
3: अनि खेतको काम चाहिँ
1: खेतको काम पनि टाइम मिलाइ मिलाइ हजुर बुवाजीले काट्नुहुन्छ होइन अनि मेरो काम चाहिँ यही हो कहिले काहीँ सत्सङमा जानुहुन्छ तिन चार दिन पाँच दिनको लागि अनि त्यति बेला चाहिँ मलाई घरमै बस्नुपर्छ
3: को को हुनुहुन्छ घरमा चाहिँ
1: मम्मी बुवा हजुरआमा तिन भाइ छौँ हामी म चाहिँ कान्छो मालदाई विदेशमा हुनुहुन्छ अनि ठुलोलाई हेर्नुभयो सरकारी जागिर उहाँ अनि दुई भाउजू म चाहिँ सोलो उहाँकै ब्युटी पार्लरमा हाम्रो मेकअपहरू हुने यताउति गर्ने हजुर त्यस्तो
3: हजुरलाई कस्तो लाग्छ नि छोराको काम
5: ठिकै लगे अब अहाँ सबै के लगे
3: हामीलाई त राम्रो लागेर आएको काठमाडौँदेखि खोज्दै खोज्दै
5: हाम्रा त याद रहे कि करे नै करे पढ्छ दोस्रो डाक्टर बन्छ इन्जिनियर बन्छ से हाम्रा बुझाइत रहे आब तक नाचैमे निमन लगै छै आब अपने सबके नजरमे केना है से बात
3: निमन छ छोराले घरमा पनि गाएर सुनाउनुहुन्छ तपाईँलाई
1: मेरो फर्स्ट लिसनर उहाँ नै हुनुहुन्छ त्यस्तो टाइपले
3: मम्मी नै हो ए तपाईँ बुवासँग भन्दा मम्मीसँग नजिक हो कि क्या हो
1: बहिनी नभएर नजिक भएको
5: पहिले त हाम्रो तिन बेटा नाच गरेर लगाए जेठ कायल आउनुसर बहिनी जाए आ यी सब नाच गरेर लगे स्टेज गाडले बाँस लगे मनमे से काटके चौकी सब राखले लक्ष्मी पूजाके दिनमे बराबर करितै एक बेर नदी पर जाके घाट पर सबके बाँस अपनो में से बाँस काटके लोको सबके बाँस काटके खलकै लोग झगड़ो करे अबे तोर बेटा बाँस कटलकौ तोर बेटा बाँस कटलकौ
1: हामी पहिले आफै प्र्याक्टिस गर्ने होइन सबैजना मिलेर अनि स्टेज बनाउने टोलमा अनि प्रोग्राम हेराइदिने हरेक लक्ष्मी पूजा बाँस नदिने फेरि यहाँको मान्छेहरू अनि हामीहरू चोरेर बाँस काट्ने
3: तपाईँको साथी हो नमस्ते
1: हेलो
3: तपाईँहरूकै ग्रुप हो
1: हजुर पहिला ग्रुप त झन् वाउ थियो हाम्रो अठार बिसजना हुन्थ्यौँ हामी तर पछि हुँदै हुँदै अब सबै विदेश जानै पर्छ नेपाल अब थाहै छैन
5: सबके मम्मी आएको रहेछ हाम्रा झगडा गरे हाम्रा बेटाको बिगाड देले हाम्रा बेटाको बिगाड देलक अहाँको बेटा सबके म तारिहाल हाम्रा झगडा गरे
3: अनि तपाईँ के भन्नुहुन्छ नि
5: हम कहैत रहे छी अपना बेटा के अहाँ समझा लू हमारा बेटा तो बिगड़ले है अपना बुआ के समझा लू
3: बुआले के भन्नुहुन्छ छोरा को काम
5: अब ओकरा तो पैसा चाहिए अब कोई बोल देखी छी लोग सब पूरित रहे छी ओकरा जोरे नाम ले छी अब की करे नहीं करे मैं थान पूछ लू वहां से
0: बुबा राजेश्वर मण्डल कान्छो छोरालाई डाक्टर पढाउन चाहन्थे तर राहुलले हिप हप संगीतको बाटो समाते। दाईहरूको संगतले राहुललाई सानैदेखि नाच्ने गाउनेमा शोख थियो। पढ़ाईमा पनि जिहिन्दार थिए। डाक्टर बन्नुपर्छ भन्ने बुबाको सपना थियो।
2: माय सब हमरा पोसलके पाललके बहुत दिक्कत से बहुत तकलीफ से हमरा मैट्रिक टिकला लगेले मैट्रिक पास हम कैलिए। ताहिके बाद मतलब जैसे जागिर नहीं कैलिए हम विदेश चलिए कतार गेली तो एक पैदो नहीं रहे सर दू गो बच्चा रहे हमारा
6: हमर ई उद्देश्य रहे कि एकरा जैसे हम तो मतलब लेबर के काम करे विदेश में आके दुख करे ये सब जैसे अच्छा कर अच्छा करे यानी कि एकरा जैसे मतलब हम विशेष जैसे डॉक्टर पढ़ाबे के लागि हम कहलिए हमरा जते मेहनत करे पड़ते विदेश में करबे एकरा सबके हम जैसे ओते तकलीफ करके ओहो टाइम में मतलब हम परिवार मशीन चलाबे हम जैसे मतलब तुरपाई करिए ताहिके बाद जैसे बकरी पोसिए गाय पोसिए खेत में काम करिए इस सब का एकरा सबके फल लिए ताहिके बाद जैसे एकरा सबके सबके बोरिंग लगे यानी कि बहुत तकलीफ रहे तीनों बच्चा के बोरिंग में पढ़े थे पढ़ा के तभी जैसे मतलब हमारे जच्चा बेटा जैसे वो ओकरा जैसे मतलब पढ़लक एससी के नौकरी भ गेले विराटनगर रह लगले एकरा लगे विराटनगर ताहिके बाद बीच में ओकरा की भेले नहीं भेले ये जैसे म्यूजिक में लाए गेले नाच गान में लाए गेले ये जैसे इमे लाए गेले
3: बुवालाई चाहिँ छोराले धेरै पढोस् जागिर खाओस् भन्ने थियो
6: मेरो इच्छा।

0: हमरा केन छिन निकाले के तो एहन बहुते काम देखाबे के है ना आ जेना गोरे पाथे के सभे फेन कनेक्शन में होते ठीक है बैंक से मास्किंग होते अब कोनो एगो चीज के लगे फ्लो करे छे जे चीज फेन सभे सीन में रहता है हमरा वे चीज केकर केकर पर जाए ए हमरे काके के ते
1: एम से स्टार्ट करे है आईना करके मतलब आई फिल्म में लाया ना
0: आई गीत में बेटा नाम के चीज आवी नहीं चाहिए एक कोड़ा बेटा नहीं चाहिए हमरा एक कोड़ा नहीं हाँ इसमें कत्ती सूट हम ही करा सकते कत्ती कत्ती कत्ती पहला कच्ची बात थे पूरे जो बात हो माँ करोड़ हम लोग पैदल सोला बंदा लगता है
2: यार मोदार पता नहीं क्या पता नहीं
0: काम में सीधे तू सब यो फूल है ना यो अब ये नेपाल में होता जी कहीं भैलू है ना यदि यही जापान में होता खेरी इसको अर्क भैलू थे होला जस्ट लगता मलाई हैन क्या बवाल स्ट्रीट फूल छ के यो तर केही भ्यालु छैन यो फ्री मा जता तत्ले हुन्छ यो फूल
3: उहाँहरुकै मम्मी हरले हो तपाईको मम्मी लाएर चराउने मेरो छोरा बिगारे भनेर
0: उहाँको मम्मी हो हामीलाई त मतलब खोजेर आउँछ कहाँ गयो उनी हो दिनभर त्यस्तो टाइपले अनि म त्यही ल्यान भनेको छु एउटा जे मुनल बात छ ले सबके उघार देलिए अपन टोल के छारा सबके हम ही बिगार देलिए अब यही ब्लेम आउँछ क्या मामा थे तैले बिगारी सबलाई होइन यस्तो फना दिन अनि यो म लेखिदिए कि मैले नै बिगारे हो मम्मी पनि त्यही भन्नुहुन्छ तैले बिगारी सबै केटाहरूलाई
3: साँच्चै बिगारेको हो त तपाईँले
0: अब यसलाई अब के भन्नुहुन्छ यो बिग्रिएको भन्नुहुन्छ कि सुध्रेको भन्नुहुन्छ तपाईँहरूकै माथि छ
3: तपाईँहरूको ग्रुपको नाम पनि छ
0: त
3: के हो
0: पहिला फर्स्टमा जेएमएल भन्ने थियो जेमा लक्ष्मी डान्स ग्रुप होइन अनि त्यसपछि म कोरियोग्राफर बन्दो ग्रुपको सबैलाई लिड गर्न थालेँ म त्यसपछि नाम चेन्ज गरिदिएँ टिइडी भन्ने टेड थर्ड आई डान्स ग्रुप सबै विदेश गइसकेको छ अब मेरो उमेरको कोही छैन यहाँ त्यही भएर बच्चाहरू मात्रै हेर्नुहुन्छ तपाईँ यो बानर सेना भन्न सकिन्छ हामी

6.9 इंच को शानदार डिस्प्ले, AI पावर्ड कैमरा, 3 वर्ष को वारंटी सहित Redmi A7 मा 5200 mAh तथा Redmi A7 Pro मा 6000 mAh पावरफुल बैटरी को साथ थप अत्याधुनिक विशेषताहरूले तपाईको मन जित्छ बारम्बार।

0: बंगलादेश का विभिन्न अस्पताल में अनुभव प्राप्त वरिष्ठ डेंटल कंसल्टेंट ऑर्थोडोन्टिक डॉक्टर विपिन भूषाल सीएमएस चितवन डेंटल सर्जन डॉक्टर रचना घिमिरे डेंटल सर्जन डॉक्टर आस्था खत्री द्वारा बिरामी को दैनिक रूप में जांच तथा उपचार भइरहेको छ।
1: सावधान उस्ता उस्तै नाम नझुक्किन होला है। बीआर डेंटल में दाँत मिलाउन का लागि सम्झनुहोस् डॉक्टर विपिन भूषाल।
2: संपर्क बीआर डेंटल न्यू रोड साझेदारी टोल यामाहा शोरूम नजिक।
3: संपर्क फोन नंबर 082-5902।
4: सुरोट सुटी पुकार खोइनी जस्ता सुटीजन्य पदार्थ सेवन नगरौ कैंसर बाट बचौ। रेडियो मध्य पश्चिम बीआर डेंटल को सहकार्य में जारी सन्देश।
5: सूर्य को विकिरण बढ़ते आंखा कमजोर होते ग्लोबल वार्मिंग आंखा में रोग अरु थुप्रे समस्या तर समाधान पशुपति आई केयर सेंटर में विज्ञ आंखा का डाक्टर संगे आंखा चेक करने अत्याधुनिक उपकरण हम आंखा सुरक्षा दिने उच्च क्वालिटी का पावर ग्लास र फ्रेम उपलब्ध छ। अब ढुक्क हुनुहोस् पशुपति आई केयर सेंटर ले तपाईको आंखा को रक्षा करने पशुपति आई केयर सेंटर कपासी दान। संपर्क नंबर 98-43-00-88-04 98-43-00-88-04 www.pasupatiicare.com।
6: वाउ राज कस्तो राम्रो जुत्ता लगाएको
7: मेड इन दंगाली हो नि त राम्रो त भइहाल्छ नि
6: तिम्रो घुमाएर कुरा गर्ने बानी अझै गएको छैन है सिधै भन न कहाँबाट ल्यायौ यो जुत्ता
7: मैले सिधै कुरा गरेको छु तिमी कुरो बुझ्दैनौ दंगाली सु मेटेरियल सेन्टरबाट ल्याएको
6: मेरो खुट्टा हो कि जुत्ता नै यस्तै हो कति टिक्दैन भने
7: एकपटक दंगालीबाट किनेर हेर न
6: लौ त म दंगाली सु मेटेरियल सेन्टरतिर गइहाले है
8: राप्ती अञ्चलकै पहिलो छाला तथा जुत्ताहरू पाइने एक मात्र पसल
7: स्कूल जुत्ता अफिस जुत्ता कन्भर्स स्पोर्ट जुत्ता तथा जुत्ता बनाउने सम्पूर्ण सामानहरू होलसेल तथा फुटकरमा पाइन्छ।
9: अब दंगाली सु मेटेरियल सेन्टर सँगै नयाँ व्यवस्थापनका साथ दंगाली गार्मेन्ट एन्ड स्कूल युनिफर्मबाट सम्पूर्ण विद्यालयका जुत्ता टाई बेल्ट ट्र्याक सुट पनि सुपथ मूल्यमा बिक्री वितरण भइरहेको छ।
10: दंगाली सु मेटेरियल सेन्टर एकता टोल अल्फा बोर्डिङ सँगै सटेको घरमा
7: प्रोप्राइटर सोमराज रैदास।
11: सम्पर्क फोन नम्बर 082-5563-775
7: सम्पर्क नम्बर 98-4-76-8-73।
12: हजुर हामी दिन्छौ तपाईलाई सन्तुष्टि एक पटकमा आएर त हेर्नुहोस् दंगाली सु मेटेरियल सेन्टरमा।
13: मध्य पश्चिम FM 91.4 मेगाहर्ज

राम राम सन्जेक 5 बजे थारू भाषक मध्यपश्चिम खबरमा शालिकराम चौधरीको हार्दिक स्वागत बा। दाङमा टिप्परको ठक्करसै दुईजनाको मृत्यु हरहल। तुलसीपुरका गुल्मा चोकमा आज बिहान रा 1 ख 2192 नम्बरको टिप्परसे राय 4 प 3390 नम्बरको मोटरसाइकल हन ठक्कर दिएर मोटरसाइकलमा सवार बाबा छाउको मृत्यु। हुइलक दाङका प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी नायब उपरीक्षक रेशम बोहरा जानकारी दिएर मृत्यु हुनामा मोटरसाइकलमा सवार लमही नगरपालिका 5 का 35 वर्षका मनोज नेपाली हो। उहाँको 5 वर्षका छावा मिरांस नेपाली रलक प्रहरी जना राखल। टिप्परको ठक्करसे गम्भीर घाइते छावा बाबाको नक्ला तुलसीपुर स्थित राप्ती प्रादेशिक अस्पतालमा प्रारम्भिक उपचार पाछ थप उपचारका लागि नेपालगंज रिफर करगिल रह। छावा मिरांसको उपचारका लागि लैजिती खराबेर डगरीमा ओ बाबा मनुषको उपचारका क्रममा नेपालगंजमा मृत्यु हुलकफे प्रहरी जना राखल। मोटरसाइकलमा सवार मृतक मनोजको जन्नी 34 वर्षको अनुसार नेपाली सामान्य घाइते हुलको उपचार पाछ डिस्चार्ज हुलक प्रहरी जना राखल। मोटरसाइकल हन ठक्कर देना टिप्पर ओ चालक शेर बहादुर थापा हन प्रहरी नियन्त्रणमा लेखन अनुसन्धान कर्तलक। दाङको प्रहरी प्रवक्ता प्रहरी उपरीक्षक रेशम बोहरा जानकारी दिएर लुम्बिनी प्रदेशको मुख्यमन्त्री चेतनारायण आचार्यले महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवी कनक्सी जनस्वास्थ्य क्षेत्रमा पुगेको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै हुकनक हकित मनोबल अभिवृद्धिका लागि प्रदेश सरकार सकारात्मक रलक बटवा रख्ल। नेपाल स्वास्थ्य स्वयंसेवी संघ नेभा लुम्बिनी प्रदेश समितिले आज मुख्यमन्त्री तथा मन्त्री परिषदको कार्यालयमा पेश गर्लक माग तथा सुझाव पत्र बुझ्दै मुख्यमन्त्री आचार्यले स्वास्थ्य स्वयंसेवी कनक र समुदाय स्तरका स्वास्थ्य सेवाका मेरुदण्डको रूपमा उल्लेख गरिरहल। मातृ तथा शिशु स्वास्थ्य खोप अभियान परिवार नियोजन सुख पोषण तथा जनचेतनामूलक कार्यक्रम मार्फत महिला स्वास्थ्य स्वयंसेवी कनक नक्से पुगलक योगदान उत्सवा संघ प्रदेश अध्यक्ष सुनिता शर्माको नेतृत्वमा गैलक टोलीसे 9 बुधे मार्ग ओ सुझाव पत्र पेश गरल रह। टोलीसे सेवा अवधि पूरा कैकन 60 वर्ष उमेर पुगलक स्वयंसेवी कनकला सम्मानजनक अवकाश सुविधा क्षमता अभिवृद्धि लागि तालिम सामाजिक सुरक्षा कोषमा आबद्धता चाडपर्व खर्च दुर्घटना तथा मृत्यु राहत कोष मासिक प्रतिवेदन भत्ता लगायतका माग धैरखल। प्रदेश सरकारले अवकाश होकन जैना स्वयंसेवी कनकलाग 50,000 देती आइलबा। मुख्यमन्त्री आचार्यले स्वयंसेवी कनकको माग अध्ययन कैकन प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ना विषय हन प्राथमिकताका साथ सम्बोधन गर्न प्रतिबद्धता व्यक्त गरिरहल। नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज तुलसीपुरको चौथो परिषद सेन्टर माध्यमिक विद्यालय तुलसीपुरमा काल सम्पन्न हो रहल। नेपाल निवृत्त शिक्षक समाज तुलसीपुरका अध्यक्ष जगत बहादुर बस्नेतका अध्यक्षता एवं केन्द्रीय उपाध्यक्ष गोविन्द न्युपानीका बरपौना एवं जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द पौडेलका विशिष्ट अतिथिमा सञ्चालित चौथो परिषदमा बोल्ना वक्ताको नक्से निवृत्त शिक्षक समाज सक्रिय बनाएकाला स्वयं निवृत्त शिक्षकहरू जो सक्रिय रूपले लाग पर्ना ओ निवृत्त शिक्षकका सेवा सुविधा थप गरेकाला समाजमा आबद्ध सक्कु शिक्षक हुँक र एकताबद्ध हुकन आवाज उठाई पर्ना बातमा जोर दिएर रह। उह परिषदमा बहाल वाला राष्ट्र सेवक हुनकला थप करगिलका महँगी भत्ता उह अनुपातमा सक्कु निवृत्त राष्ट्र सेवक हुनकला फेर थप कर पर्ना नेपाल सरकार सक्षम माग समक्ष माग करगिल रह। उह अवसरमा नगर सचिव दामोदर न्युपानेसे सांगठनिक प्रतिवेदन ओ कोषाध्यक्ष वसन्तराज न्युपानेसे आर्थिक प्रतिवेदन प्रस्तुत गरल रह। दुनू प्रतिवेदनमा व्यापक छलफल कैकन आगामी 1 वर्षकलाग सांगठनिक तथा आर्थिक कार्य दिशा तय कैकन पारित करगिल रह। कार्यक्रममा बरपौना गोविन्द न्युपाने जिल्ला अध्यक्ष गोविन्द पौडेल जिल्ला उपाध्यक्ष पद्म प्रसाद शर्मा पूर्व जिल्ला अध्यक्ष विष्णु प्रसाद शर्मा अधिकारी जिल्ला सदस्य वृन्दा केन्द्रीय प्रतिनिधि विष्णु प्रसाद आचार्य खोराई नगर समितिका अध्यक्ष बलदेव अधिकारी खोराई नगर समितिका सचिव ज्ञानेन्द्र गौतम सल्लाहकार नवराज लामिछाने आजीवन सदस्य माधव लामिछाने नगर समिति सदस्य मदन कुमार आचार्य अभिभावक पुतला बिक लगायतले शुभकामना मन्तव्य व्यक्त गरेर ओ गढवा गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखाका आयोजनामा माटो परीक्षण घुम्ती शिविर सञ्चालन हुइतिरल्बा। कृषि योग्य जमीनको माटिक अवस्था पहिचान कैकन आवश्यक
आवश्यकता अनुसार मलखाद प्रयोग कर किसानलाई हुकनकला प्रोत्साहन गर्ने उद्देश्य से शिविर संचालन करिगलक गढ़वा गाउँपालिकाको कृषि विकास शाखा का प्रमुख कर्ता राम यादव जानकारी दिएर कृषि विकास शाखा से किसान हुकनकला माटी परीक्षण कराक नकेल मलखाद प्रयोग कर आग्रह किरख पाचक समय जथाभावी तथा अत्यधिक रासायनिक मल को प्रयोग के कारण माटी में उर्वरा शक्ति घटी गई को माटी गुणस्तर में नकारात्मक असर पर्लक घोड़ा गांवपालिका का कृषि विकास शाखा का कृषि प्राविधिक हेमराजपूर्ण जानकारी दिख ल शिविर मार्फत किसानों कनक खेतबारी में लटकेलक माटी में नमूना परीक्षण कईकन माटी के मरलक पोषण तत्व अम्लीयता तथा आवश्यक मलखाद का मात्रा संबंधी जानकारी प्रदान कर जिनेबा इससे किसानों कनक से बाली का आवश्यकता अनुसार वैज्ञानिक तरीका से मलखाद प्रयोग कर सकना विश्वास लेगिल बा हुईठा ताजुक थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर अत्र काल संज्ञापे थारूभाषक मध्यपश्चिम खबर सुन सिक्ने बाटी अखसक खबर मसे समाचार कक्ष कसक कुसंग्रह संग मैशालिक राम चौधरी विदाईटू रिरी मध्यपश्चिम उनिटी रवि राम राम।

0: आवाज पश्चिम नेपाल को आवाज आवाज हिंदको आवाज यो हो रेडियो मध्य पश्चिम एफएम 91.4 MHz।
1: स्वास्थ्य क्षेत्र में विश्वासिलो ठाउँ, कोई कसैलाई रोग लागे कोठा अस्पताल जाऊ। सर्जन, फिजिशियन, हाड़ जोड़नी, नसा